ॿिन्ही मुल्कनि जी ख़ुशी ऐं ॾुख में गॾु बीहण वारे अज़म जी अलामत आहे। पाकिस्तान सदाई हिकु तरफ़नि नक़दमनि ऐं मुख़ालफ़त इलाक़ाई ऐं आलमी चैलेंजनि जी चिटादार हलंदड़ ॻाल्हियुनि जी हिमायत कई आहे। मसूद पज़िशकियान चयो त ईरान पाकिस्तान सां पंहिंजे लाॻापन खे घणी अहमियत ॾींदो आहे। सियासी, मुआशी, सिक्योरिटी ऐं इलाक़ाई मामलनि में सहकार खे हथी ॾियण जा ख़्वाहिशमंद आहियूं। सदर पारां ईरानी सुप्रीम लीडर लाइ नेक ख़्वाहिशनि जो इज़हार। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर सां ईरानी सदर मसूद पज़िशकियान जी मुलाक़ात। आई एस पी आर मौजूदु मुलाक़ात दौरान इलाक़ाई अगबराई ऐं अमन क़दमनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। ईरानी सदर ॻाल्हियुनि में तामीरी किरदार छिकताण में घटिताई ऐं इलाक़ाई इस्तक़ाम लाइ पाकिस्तान जे किरदार जी साराह कई। इलाक़ाई स्टेक होल्डर्स विच में मफ़ामत वधाइण ते बि पाकिस्तान जी कोशिशुनि जी बखाण। फील्ड मार्शल ख़िते में अमन ऐं इस्तक़ाम लाइ पाकिस्तान जो पुख़्तो अज़्म वरिजायो। लाॻापा मज़बूत बणाइण जो बि अज़्म। ईरान जे सदर मसूद पज़िशकियान जो इस्लामाबाद ते मानाइतो आदर भाव। ईरानी सदर जो जहाज़ जीअं पाकिस्तान जे हदनि में दाख़िल थियो त पाक फज़ाई जे जहाज़नि खे सलामी ॾिनी। नूर खान एयरबेस ते 21 तोपनि जी सलामी। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, मोहसिन नक़वी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं ॿियनि सदस्य आजियां कई। वज़ीर आज़म हाउस पहुचण ते ईरानी सदर खे गार्ड ऑफ ऑनर पेश। ईरानी सदर वज़ीर आज़म में हाउस बोटो बि पोखियो। पाकिस्तान जो हिकु ॾींहं जो दौरो मुकमल करण बाद सदर पज़िशकियान वतन वापसि रवाना। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त दुनिया हाणे पहिरियां खां वधीक महफ़ूज़ थी वई आहे। आबराए हुरमुज़ सभिनी लाइ खुलियल आहे। गुज़िरियल ॾींहुं रिकॉर्ड 19 मिलियन बैरल तेल आबराए हुरमुज़ मां गुज़रियो। तेल जूं क़ीमतूं घटि थी रहियूं आहिनि। हिकु इंटरव्यू में ट्रंप चयो त ईरान माहिदे जी पाबंदी न कई त जेको ज़रूरी हूंदो उहो कंदुसि। ईरान खे इनकलाबी तहरीक बदिरां हिकु रियासत जीअं कमु करणो पवंदो। ईरान रियासत जीअं कमु करे त वॾी तरक़ी जा मौक़ा मौजूदु आहिनि। इराक में हमास ऐं हिज़बुल्लाह जहिड़ा गुरू दहशतगर्द में मुलविस आहिनि। इराक मां मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला इलाक़ाई अमन लाइ वॾो ख़तरो आहिनि। हिते में जेसीं ताईं ईरानी प्रॉक्सीज़ जा हमला जारी रहंदा, छिकताण घटि न थींदी। अमरीकी परॾेह वज़ीर मार्को रूबियो अबूज़ेबी में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे चयो आहे त आबनाए हुरमुज़ ते को बि मुल्क टूल टैक्स या फीस लागू नथो करे सघे। आलमी आबी रस्तनि ते टैक्स लॻाइण या फेस वठणु आलमी कानून जी भञकड़ी आहे। हिते जा समूरा मुल्क मौक़िफ़ सां इतफ़ाक़ कनि था।

सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद के इश्क जो आजा पुसण जो करार असल।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: भरोसे सबब मुमकिन थियूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं फील्ड मार्शल आसिम मुड़ी जूं अमन लाइ कोशिशूं साराह जोगियूं आहिनि। अमन अमान लाइ कतर, तुर्किया, मिस्र ऐं दोस्त मुल्कनि जे क़यादत जा बि शुक्रगुज़ार आहियूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे ईरानी सदर चयो त ॿिन्ही मुल्कनि जी मंज़िल साॻी ऐं मुस्तक़बिल हिक ॿिए सां सरहल आहे। पाकिस्तान रुगो पाड़ेसरी न पर असांजो भाउ ऐं प्यारो दोस्त पिणु आहे। तेहरान ऐं इस्लामाबाद जा लाॻापा पहिरियां खां वधीक मज़बूत थींदा। सदर आसिफ अली ज़रदारी सां ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान जी मुलाक़ात। तेवान सदर में मुलाक़ात दौरान पाक ईरान लाॻापन इलाक़ाई अमन खे वधीक मज़बूत बणाइण वारे अज़म जो वर्जाओ। ॿ तरफ़नि लाॻापन इलाक़ाई राब्तनि ऐं मुआशी सहकार जे मामलनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। सदर आसिफ ज़रदारी हाणोके तकरार खां पोइ पाकिस्तान जे पहिरें दौरे ते सदर पज़ेशियान जी आज़ियां कंदे चयो त ईरानी सदर जो दौरो ॿिन्ही मुल्कनि जी ख़ुशी ऐं ॾुख में गॾु बीहण वारे अज़म जी अलामत आहे। पाकिस्तान सदाई हिकु तरफ़नि क़दमनि जी मुखालफ़त, इलाक़ाई ऐं आलमी चैलेंजेस जे चटादार हल लाइ ॻाल्हियुनि जी हिमायत कई आहे। मसूद पज़ेशियान चयो त ईरान पाकिस्तान सां पंहिंजे लाॻापनि खे घणी अहमियत ॾींदो आहे। सियासी, मुआशी, सिक्योरिटी ऐं इलाक़ाई मामलनि में सहकार खे हथ ॾियण जा ख़्वाहिशमंद आहियूं। सदर पारां ईरानी सुप्रीम लीडर लाइ नेक ख़्वाहिशनि जो इज़हार। फील्ड मार्शल सदर आसिम मुनीर सां ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान जी मुलाक़ात। ISPR मूजिबि मुलाक़ात दौरान इलाक़ाई अकबराई अमन क़दमनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। ईरानी सदर ॻाल्हियुनि में तामीरी किरदारु, चिकटाण में घटिताई ऐं इलाक़ाई इस्तक़ाम लाइ पाकिस्तान जे किरदार जी साराह कई। इलाक़ाई स्टेक होल्डर्स विच में मफ़ामत वधाइण ते बि पाकिस्तान जी कोशिशुनि जी वाखाण। फील्ड मार्शल खिते में अमुन ऐं इस्तक़ाम लाइ पाकिस्तान जो पुख़्तो अज़म बरजायो। लाॻापा मज़बूत बणाइण जो बि अज़म। ईरान जे सदर मसूद पज़ेशियान जो इस्लामाबाद ते मानायतो आदर भाउ। ईरानी सदर जो जहाज़ जीअं ई पाकिस्तान जे अदन में दाख़िल थियो त पाक फिज़ाए जहाज़नि खे सलामी ॾिनी। नूर खान एयरबेस ते 21 तोपनि जी सलामी। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, मोहसिन नक़वी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं ॿियनि फ्रंस आजियां कई। वज़ीर आज़म हाउस पहुचण ते ईरानी सदर खे गार्ड ऑफ आनर पेश कयो वियो। ईरानी सदर वज़ीर आज़म हाउस में बूटो बि पोखियो। पाकिस्तान जो हिकु नए ॾींहं जे दौरो मुकमल करण बाद सदर वापसि रवानो।

0: अमरीकी सदर ट्रंप चवाए तो दुनिया हाँ पहरें का वधिक मजबूत थी वही है। आपने हुरमस सभी ला खुलियल है। गुजल नी रिकॉर्ड 19 मिलियन बैरल तेल आपने हुरमस में गुजरियो। तेल जो कीमतों घट थी रही एक इंटरव्यू में ट्रंप ईरान मुआहदे की पाबंदी न कई तो जो जरूरी हों वो कंदासीं। ईरान के इनकलाबी तहरीक बदर एक रियासत जी कम करो पवो ईरान रियासत जी कम करे थी तो वही तरक्की जहाँ मौका मौजूद हैं। इराक में हमास हिजबुल्ला जड़ा गिरोह दहशतगर्दी में मलस हैं। इराक में मिजाइल ड्रोन हमला इलाकई अमन लाइ वो खतरो है। खिते में जेस तरानी प्रॉक्सीज ज हमला जारी रहा छाण त घट नी चिकटाण घट नी अमरीकी परदेही वजीर मार्को रूबियो अबूधाबी में मीडिया से गाल बोल कर अपने हुरमत से को भी मुल्क टूल टैक्स या फीस लागू न तो करे सके। आलमी आबी रस्तन से टैक्स लगान या फीस वन आलमी कानून की भनकड़ी है। खिते जहा समूरा मुल्क अमरीका के मौकफ से इतफा कन था। संगरार में अगवा थी वल मासूम प्रिया कुमारी आखिर करें बाजियाब थी। अगवा वाके के 5 साल गुजरी वन बावजूद सिंध पुलिस प्रिया के बाजियाब करण में नाकाम। प्रिया कुमारी संगरार में 19 अगस्त 2021 ते जो मयाशूर ते सबील हलाईंदे अगवा थी वही हुई। 4 IGs मुश्ताक महर गुलाम नबी मेमून रिफत मुख्तार जावेद आलम ओडो आया पर प्रिया कुमारी बाजियाब न थी सकी। सिंध हुकूमत पारा सीनियर पुलिस ऑफिसर से मुश्तमल JITs प्रिया जो पतो न लगाए सकूं। प्रिया के वालिद राजू मल है तो हुकूमत ए पुलिस असके रुगो आसरा ए दिलासा दिना पर प्रिया वापस न कराई। आए पनी आखिर लग बाजी थाने जद में हथियार बुन तक गोठानो कतल कोट गड़ी में हथियार बुन के हमले में साबर जंगू महर मारजी पो। पुलिस बुधा है तो वाक्य गैरत के मामले तक पेश अचान जहा इतला वाक्य की जांच शुरू कई वही है। जवाबदार के जल्द गिरफ्तार किया वो।
1: सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड किसान की उम्मीद खुशहाली की नवीद।
2: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का।
1: पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार और झाड़ देने वाला सनक्रॉप ग्रुप का।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: GAFM 90.8 सकरण नवाबशाह तरफा एक अहम ए शानदार कैरियर मौको पेश कर वने तो GAFM 90.8 सकरण नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार ए जिम्मेवार उम्मीदवार का दरख्वास्तों तलब कई वन थी। GAFM एक अड़े प्रोफेशनल फर्द की गोल्हा में है जो मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप ए ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतों रखे इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पैंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौको है। देर न करो अभी अप्लाई करो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज।
5: सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान के जरो नाहे यजीद के इश्क जो आजा वसण जो करार असल इमामन सी।

सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान के जरो नाहे यजीद के इश्क जो आजा वसण जो करार असल इमामन सी।

0: GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम आई शानदार करियर मौकियो पेश कयो वने थो GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार आई जिम्मेवार उम्मीदवारन का दरख्वास्तों तलब कयो वने थियो GAFM एक अहड़े प्रोफेशनल फर्द जी गोल्हा में आहे जेको मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप आई ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतूं रखे आई इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पेंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन व्हाट्सएप नंबर 03111770451 ही एक बेहतरीन करियर मौको आहे देर न करियो अभी अप्लाई करियो GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: हर दिन हर पहर जिंदगी

सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद के ये इश्क जो आजा पुसण जो करार असल इमामन सी।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अमरीकी मौकफ से तफाकन था ईरान के इनकलाबी तहरीक बदां रियासत तौर कम करणो पवंदो। खिते में ईरानी प्रॉक्सीज जहां हमला बंद थियण ताईं छिकाण खत्म नथी थी सघे। इराक में मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला इलाकाई अमुन लाइ वॾो खतरो आहिनि।

0: ऐं सिंधड़ी में पाणी कोट ख़िलाफ़ आबादगार सरापा एहतजाज, मीरपुर ख़ास रोड ते थियणो। जमनाऊ केनाल मां निकिरंदड़ खीराओ दोस्तो शाख पाणी कोट ख़िलाफ़ आबादगारनि सां गॾु मीरपुर ख़ास रोड ते धरणो हयो। आबादगारनि जो तापाशी हमिलो, मुंड जे आबादगारनि खां रिश्वत वठी पाणी विकिरो करे रहियो आहे। पुछड़ी में पीअण जेतिरो पाणी बि नाहे, पाणी ॾिनो वञे।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम और शानदार करियर मौके पेश कर वने थो। जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार और जिम्मेवार उम्मीदवार का दरख्वास्तों तलब कई वन थी। जीए एफएम एक अड़े प्रोफेशनल फर्द की गोल्हा में है जो मीडिया मैनेजमेंट, टीम लीडरशिप और ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतों रखे और इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पैंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौके है, देर न करियो, अभी अप्लाई करियो। जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज। सकरंट के हो तो आवाज भी सकरंट की है।
4: सुनते रहो जीए एफएम 90.8।

0: करे कमेंट, बातें तेरी दिल पे ना देती मेरे गेंद, न करूँ तुझे ब्लॉक न करूँ तुझे बैन, तू ना मेरा हेटर तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम और शानदार करियर मौकियों पेश कर वने थो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह थे स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार और जिम्मेवार उम्मीदवार इनका दरख्वास्तों तलब कई वने थियो। GAFM एक अहड़े प्रोफेशनल फर्द जी गोल्हा में आए जिको मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप और ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतों रखे और इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पेंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौके आए, देर न करियो अभी अप्लाई करियो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज।
3: सख्ती शहादत जी मिड़ोई मला जरो नाहे यजीद के ये इश्क जो आजा वसण जो करार असल इमामन सी।

सख्ती शहादत जी मिड़ोई मना खे जरो नाहे यजीद के इश्क जो आजा वसण जो करार असल इमामन सी।

अमेरिका ईरान विच में ॻाल्हियुनि जे बेमरल लाइ टे वर्किंग ग्रुप ठाहिया विया आहिनि. पहिरें ग्रुप ईरान जे एटमी प्रोग्राम बाबति मामला ॾिसी रहियो आहे. ॿियो ग्रुप ईरान ते लॻायल पाबंदियुनि ऐं मंझंदि असासन जो जाइज़ो वठी रहियो आहे. टियों ग्रुप लबनान जी सूरतहाल ते कमु करे रहियो आहे. पर तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदराबी चयो आहे त पाकिस्तान जो खिते में अमन जे लाइ कोशिशूं जारी आहिनि. वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं फील्ड मार्शल स्विट्ज़रलैंड में थियल ॻाल्हियुनि जो हिसो हुआ. ईरानी सदर बि पाकिस्तान जे ॿिनि ॾींहनि जो दौरो कयो आहे. सालसे अमन वारनि कोशिशुनि दौरान पाकिस्तानी मीडिया बि मुस्बत किरदार अदा कयो आहे. स्विट्ज़रलैंड में ईरान अमरीका ऐं सारस मुल्कनि जूं टेक्निकल ॻाल्हियूं मुकमल. चार वर्किंग ग्रुप क़ाइमु करण ते इतफ़ाक़. धुरनि जो जंग जे मुकमल ख़ात्मे लाइ ॻाल्हियूं जारी रखण ते पियो इतफ़ाक़. ईरानी नायब परॾेही वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादी चयो आहे त अमरीका ऐं ईरान विच में ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर आला सतह हूंदो. ॻाल्हियुनि लाइ ईरानी वफ़द जी क़यादत स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबात कंदो. परॾेही वज़ीर अब्बास चिराग़ची ऐं अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान ऐं क़तर जा वज़ीर आज़म बि शरीक थींदा. अमरीका मंजमद कयल ईरानी असासनि मां 12 अरब डॉलर ॿिनि किस्तनि में जारी कंदो. हर किस्त 4 अरब डॉलर ते ॿधल हूंदी. लबनान में चेकटाण जे ख़ात्मे लाइ अलॻि अलॻि सेल बि क़ाइमु कया विया आहिनि. अमरीकी सेनेट ईरान ख़िलाफ़ ॿीहर जंग शुरू करण खां पहिरियां कांग्रेस जी मंज़ूरीअ खे लाज़मी करार ॾेई छॾियो. ठहराउ अक्सरियत राय सां मंज़ूर. अमरीकी सदर डोनल्ड ट्रंप जे सेनेट ठहराउ ते सख़्त तनक़ीद. अमरीकी सेनेट में ईरान जंग बाबति ठहराउ जी हिमायत में 50 ऐं मुखालफ़त में 48 वोट पिया. ट्रंप जी जमायत रिपब्लिकन्स बि जंग मुखालफ़त ठहराउ जी हिमायत में वोट कयो. अमरीकी सदर सेनेट जे मंज़ूर कयल ठहराउ ते तनक़ीद कंदे चयो आहे त सेनेट ठहराउ मंज़ूर करे दुश्मन खे फ़ाइदो ऐं सहूलत ॾिनी आहे. चइनि नाकारा रिपब्लिकन्स बि ठहराए ते डेमोक्रेट्स जो साथ ॾिनो. हिन सेनेटर्स ते मुंहिंजो कमु वधीक मुश्किल करे छॾियो आहे. मां कंहिं न तरीक़े सां मुकमल कंदुसि. ईरानी घरू वज़ीर सिकंदर मोमनी जी वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी सां मुलाक़ात. पाक ईरान लाॻापन ऐं अमन मुआदे बाद खिते सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल. ईरानी घरू वज़ीर ईरानी सदर हज़रत वफ़ा जी पाकिस्तान में भरपूर आज़ियां ते थोरा मञिया. घरू वज़ीरनि जे हिते में चेकटाण कढण ते इतमान जो इज़हार. मोहसिन नक़वी चयो त विच ओभर में चटादार अमन लाइ पाकिस्तान पंहिंजो कोशिशूं जारी रखंदो. सिकंदर मोमनी पाकिस्तान जे किरदार ऐं पाकिस्तानी क़ौम जे सहकार खे साराहियो.

આપના હુરમતે કોઈ પણ મુલકી આ ટોલ ફીસ લાગુ નથી કરી શકે. આદમી આવે રસ્તે તે ટેક્સ યા ફીસ લગાવણ આલમી કાનૂન જે ખિલાફ આ અબુઝેબી મેં મીડિયા સા ગાલાઈ અમરીકી બડે વઝીર માર્કો રૂબિયો ચવાયત કે તેરા સમૂરા મુલ્ક અમરીકી મોકફ સા ઇંતફાક કરન થા. ઈરાન કે ઇનકલાબી તહરીક બદલા રિયાસત તૌર કમ કરણો પવંદો. ખિતે મેં ઈરાની પ્રોક્સીઝ જે હમલા બંધ થયણ તાઈ ચિકટાણ ખતમ નથી થઈ શકે. ઈરાક માં મિઝાઇલ એન્ડ ડ્રોન હમલા ઇલાકાઈ અમુન લાઇ વડો ખતરો આહેન. केपी के इलाके रवरदीर में सीटीडी की कार्रवाई च खादी दहशतगर्द मार सीटीडी मौजूद मारजीवल दहशतगर्द पुलिस चौकी से हमले ए पुलिस एहलकार के कतल में मुलस हुआ. मारजीवल दहशतगर्दन के कब्जे में छह कलाशनकोव दस्ती बम मिलिया. गृह वजीर मौसम नकवी के दहशतगर्दन खिलाफ कामयाब कार्रवाई से सीटीडी के भेटा पेश. मौसम नकवी चौथ सीटीडी के बहादुर जवानन दहशतगर्दन के सनन मकसद में नाकाम बनाया. पनवाकल भरसा नौजवान कतल. घोट गढ़ी में हथियार बंधन नौजवान साबर मर के कतल कयो. जवाबदार फरार लाश अस्पताल मुंतकिल. सिंध में ज़रई पानी की खोट संगीन थी वही. आबादगार मुख्तलिफ़ शहर में धरना. सिंधरी में पानी खोट खिलाफ़ आबादगार सरापा एहतजाज. मीरपुर खास रोड से धरणो. खेराओ 200 शाख में पानी खोट खिलाफ़ आबादगार सांगड़ मीरपुर खास रोड से धरणो हयो. आबादगार आपाशी अमलदार से पानी विको करण जो इल्ज़ाम. पुछड़ तीन पानी पहुंचाने जो मुतालबो. कड़ियो कंवर में आबादगार पानी खोट खिलाफ़ एहतजाज. फाजल राव चौक से धरणो. अज राजवास शाख के आबादगार फाजल राव चौक से एहतजाज मुजाहरो कर धरणो है. उस चवण है तो पानी खोट सबाब जमीनों बंजर थी वह लखे रुपये का नुकसान थी रहा है. जाति के सामूडी पट्टी में पानी खोट शिदत अख्तियार कर वही. समय खूह ब खारा थी वह. जाति माइनर टंगो माइनर कारूंड शाख मालिया शाख ए मू शाख सुखी व्यों. पानी खोट सबाब दुकार वाल सूरत हाल. 150 का गोठन में पीने के पानी जो बहरान. खूह ए नलका ब पानी छे व्या. केतर ही गोठन में जा रवासी लल पलान कर लगा. रवासन चवण है जमीनू बंजर बणजी व्यून. पीने लाय पानी ना लल पलान से मजबूर आयू.

ऐं कुंडरी में वापारी हरेश कुमार जे अगवा ख़िलाफ़ हिंदू पंजाब जे सॾ ते एतिराज़। वापारियुनि अमरीकी चौक खां रैली कढी प्रेस क्लब वारो धरणो हयो। मुज़ाहिरनि मूजिब वापारी हरेश महेश्वरी खे ॿ ॾींहं अॻु पंहिंजे ज़रिज़ में अगवा कयो वियो आहे, खेसि बाज़ियाब करायो वञे।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: GAFM 90.8 सकरण नवाबशाह तरफा एक अहम और शानदार करियर मौके पेश कर वने थो। GAFM 90.8 सकरण नवाबशाह थे स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार और जिम्मेवार उम्मीदवार का दरख्वास्तों तलब कई वन थी। GAFM एक अहड़े प्रोफेशनल फर्द की गोल्हा में है जो मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप और ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतों रखे इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पैंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौके है, देर न करियो, अभी अप्लाई करियो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज।
2: सख्ती शहादत जी निसोरोई नाज, सख्ती शहादत जी निसोरोई नाज, रिंद परूड़ी ने राज।

सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद खे इश्क जो आजार वसण जो करार असल इमामन सी।

रण सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद खे ये इश्क जो आजार वसण जो करार असल इमामन सी।

मेरे हुसैनियों, करबला मक्तले हुसैन बनी और इस मक्तल से इस्तगासाए हुसैन इब्ने अली 1400 सदियों से फजा में गूंज रहा है। तो कोई है जो फातिमा के लाल की आवाज पर लब्बैक कहे? सुनो सुनो हुसैनियों, सुनो मातमी जवानों, इस आवाज इस्तगासा पर लब्बैक कहने के लिए जौनो हबीब सा जज्बा चाहिए, मीसमो सलमान सा सब्र चाहिए। लबों पर लब्बैक या हुसैन की सदा सजाकर पर्दादार हुसैनी माएं, बहनें, बेटियां, ये जवानों पीर कचरे बातिल के दरो बाम हिला दे। सूरमा फितनाए बातिल को मिटा देते हैं, खून दहके हुए जर्रों को पिला देते हैं, अपने चांदों को अंधेरों में सुला देते हैं, अपनी गोदी के चरागों को बुझा देते हैं। मिसले शब्बीर जो पैगामे अमल देते हैं, ऐसे ही लोग जमाने को बदल देते हैं।

अमरीका ईरान विच में गालियन जे बे मरहले लाइ टी वर्किंग ग्रुप्स ठाहिया विया आहिनि। पहिरियों ग्रुप ईरान जे एटमी प्रोग्राम बाबति मामला ॾिसी रहियो आहे, ॿियो ग्रुप ईरान ते लॻायल पाबंदियुनि ऐं मुंजमद असासन जो जाइज़ो वठी रहियो आहे। टियों ग्रुप लेबनान जी सूरतहाल ते कम करे रहियो आहे। परॾेही तर्जुमान ताहिर हुसैन इंद्राबी चयो आहे त पाकिस्तान जो ख़िते में अमन जे क़याम लाइ कोशिशूं जारी आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ऐं फील्ड मार्शल स्विट्ज़रलैंड में थियल गालियुनि जो हिसो हुआ। ईरानी सदर बि पाकिस्तान जो ॿिनि ॾींहनि जो दौरो कयो आहे। सालिसी ऐं अमन वारियुनि कोशिशनि दौरान पाकिस्तानी मीडिया बि मिसबत किरदार अदा कयो आहे।

मौलाना सां जेके ॻाल्हि कई आहे कबर में खणी वेंदुसि पर कंहिंखे न ॿुधाईंदुसि। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं जे यू आई सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान विच में क़ौमी असेंबली इजलास दौरान दिलचस्प जुमलनि जी ॾे वठि। मौलाना फज़लुर रहमान जवाब ॾींदे चयो त वज़ीर आज़म खे ॻाल्हि ऐवान खे ॿुधाइण जी इजाज़त ॾियां थो, जंहिं ते वज़ीर आज़म वरी जवाब ॾींदे चयो त मौलाना जी आछ क़बूल न कंदुसि छाकाणि त पोइ मामला तमामु घणा ख़राब थी वेंदा। ॿिन्ही ॼणनि विच में कहिड़ी ॻाल्हि थी वज़ीर आज़म ऐं मौलाना बि न ॿुधायो। बिलाल भुट्टो सरदारी जो एमकेएम ते तंज, वफाकी हुकूमत खां धार थियण जो मशवरो। क़ौमी असेंबली में ॻाल्हाईंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो सरदारी चयो त कराची जे मेंबर्स खे तरमीम जो लॉलीपॉप ॾिनो वेंदो आहे, छा कराची वधीक अहम आहे या ही कुर्सियूं? अव्हां केसिताईं हिन लॉलीपॉप ते हलंदा? वफाकी हुकूमत खां धार थियो, का बि तरमीम आणण खां पहिरीं मकानी चूंडूं करायूं वञनि। कराची जहिड़ो मकानी निज़ाम लाहौर में त आणियो, इस्लामाबाद में मकानी निज़ाम आणियो, मेयर खे ख़ुदि मुख़्तार बणायो।

सिंध के मुख्तलिफ शहरों में अठ महरम जहाँ मातमी जुलूस बरामद थियण बाद मंजिल तरफ रवाना हुआ। कराची मिनिस्टर पाक का निकतल मातमी जुलूस रिवायती रस्तन तीनों हुसैनिया ईरानिया खारा दर पहुंची नर थो। खैरपुर में भी 200 साल का निकरंदड़ कदीमी मातमी जुलूस मंजिल तरफ रवाना हुआ। सिक्योरिटी इंतजाम इंतहाई सा।

0: मलीर माँ बोरी माँ हटायल नीगरी के जाती बाद कत्ल करण जो इंकशाफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तस्दीक थी है। बाड़ी की लजा लुट बाद कत्ल वे वाक्य जो सूबाई घर वजीर जलाल सनन जा नोटिस वरतो। एसएसपी मलीर का वाक्य की रिपोर्ट तलब जवाबदार के गिरफ्तारी जो हुक्म। नवकोट में अगवा थियल व्यापारी हरेश कुमार की बाजियाबी लाए मीरपुर खास कुंडरी में एहतजाज। हिंदू पंचायत के सटे मीरपुर खास कुंडरी में एहतजाज किया। मुजाहिरीन जरी जमीन से पानी लाए वेल हरेश कुमार के बड़ी या पेरी अगवा किया। पुलिस यहां तक केस बाजियाब ना कराया, हरेश के बाजियाब कराया वाले। सिंध में जरई पानी की खोट संगीन थी वही। आबादगार जा मुख्तलिफ शहर में धरना। सिंधड़ी में पानी खोट खिलाफ आबादगार सरापा एहतजाज। मीरपुर खास रोड से धरनो। खेराहो दोसू शाख में पानी खोट खिलाफ आबादगार सागर मीरपुर खास रोड से धरनो है। कड़ियो गंवर में राजबाज आबादगार जो पानी खोट खिलाफ एहतजाज। फाजिल राहू चौक से धरनो में आबादगार जो मुजाहिरो। नए डेरे में पुलकोटा माइनर की खाटी सफाई न थियण खिलाफ आर्यन आबादगार एहतजाज किया। पीर वसण में घोट कादिर डिनो। शहर के रवासियन अली बहर वाह मोजाई शाख पीर वसण माइनर में पानी कोट खिलाफ एहतजाज किया। आबादगार जो पानी कोट खत्म कर फसल बचाने जो मुतालबो। जाति की समुंडी पट्टी में पानी कोट शिदत अख्तियार करे वही। समय खूब ही खारा थी व्या। जाति माइनर टंगू माइनर कारून शाख मालिया शाख आए ब्यू शाखू सुकी व्यू। पानी कोट सबब रुकार वारी सूरतयाल 150 का वधिक गोठन में पीण के पानी जो भरान। खूह नलका भी पानी छड़े व्या। खेतन ही गोठन में रवासी लड़प्राण करण लगा। रवासियों जो चवण है त जमीनू बंजर बणजी व्यू आन। पीण लाय भी पानी ना लड़प्राण से मजबूर आयो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम और शानदार करियर मौके पेश कर वने थो। जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार और जिम्मेवार उम्मीदवार का दरख्वास्त तलब कई वन थी। जीए एफएम एक अड़े प्रोफेशनल फर्द की गोल्हा में है जो मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप और ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहतू रखे इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौके है। देर न करियो, अभी अप्लाई करियो। जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज।

सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद के इश्क जो आजा वसण जो करार असल इमामन सी।

0: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: जी एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम ए शानदार कैरियर मौको पेश कयो वने थो। जी एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार ए जिम्मेवार उम्मीदवारन का दरख्वास्तों तलब कयो वने थियो। जी एफएम एक अहड़े प्रोफेशनल फर्द जी गोल्हा में आहे जेको मीडिया मैनेजमेंट, टीम लीडरशिप ए ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतूं रखे ए इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पंहिंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौको है। देर न करियो, अभी अप्लाई करियो। जी एफ एम 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज।

सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद के ये इश्क जो आजा हुसन जो करार असल इमामन सी।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आजाद कश्मीर में एहतजाज मकसद चूंडू रोकना है, धरना जत्थन जरिए इलेक्शन रोकने सकते थी। कौमी असेंबली में गाले वजीर आजम के सलाहकार राणा सनावला है तो मुजाहरीन रावला कोर्ट में धरनो हणी वेठल बो किथे भी एहतजाज ना है। पाबंदी मिले इलेक्शन कमेटी महाजरन जो 12 सीटों जो बुनियाद बनाए मुजफ्फराबाद से लश्कर खुशी करना चाहे थी।

पाकिस्तान जी कोशिशन सबब अमेरिका ए ईरान विच में जंग बंदी थी आहे। अमेरिका ए ईरान विच में 47 सालन बाद सिधी रीत गालियो थियो। कौमी असेंबली में गालाइंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चयो आहे त पाकिस्तान खिते में जारी छिकताण जे खात्मे लाइ भरपूर किरदार अदा कयो। असां जी कोशिश हुई त इस्लामाबाद में ई मामला हल थी वञनि। मार्शल आसिम मुनीर सूरत हाल में भरपूर किरदार अदा कयो। दुनिया में अॼु पाकिस्तान खे पीस मेकर सॾियो पियो वञे। मुल्क जो वकार बि वधियो आहे।

स्विट्जरलैंड में ईरान अमेरिका ऐं टकरी मुल्कनि जूं टेक्निकल ॻाल्हियूं मुकमल चार वर्किंग ग्रुप क़ाइमु करण ते इतफ़ाक़ दोरिन जो जंग जे मुकमल ख़ात्मे लाइ ॻाल्हियूं जारी रखण ते बि इतफ़ाक़ ईरानी नायब परॾेही वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादी चयो आहे त अमरीका ऐं ईरान विच में ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौरु आला सतह ई हूंदो ॻाल्हियुनि लाइ ईरानी वफ़द जी क़यादत स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ़ कंदो परॾेही वज़ीर अब्बास राख़्ची अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान ऐं क़तर जा वज़ीर आज़म बि शरीक थींदा अमरीका मंजमंद कयल ईरानी असासनि मां 12 अरब डॉलर ॿिनि किस्तनि में जारी कंदो हर किस्त 6 अरब डॉलर ते ॿधल हूंदी लबनान में छिकताण जे ख़ात्मे लाइ अलॻि सेल बि क़ाइमु कया विया आहिनि।

सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान के जरो नाहे यजीद के इश्क जो आजा हुसन जो करार असल इमामन सी।

कुबरा, नशे में मस्त है आयत ये पूरी सबको सुना। वो हाथ खैर का है कौन मुझको ये तो बता, कि जिससे जिल्लत तो तौकीर बांटता है खुदा। वो हाथ तू है कि वो हाथ तू है कि हम अहले बैत हैं उसके, हम ही हैं इज्जत और जिल्लत के

तू कैद करके हमें समझा है कि आजाद है तू, ये तेरी खाम ख्याली है कि आबाद है तू, नस्ल दर नस्ल सदा के लिए बर्बाद है तू, फैसला रब का है, फैसला रब का है, मोहलत है संभल जा

से तुम्हारी है लहू का बहा पाको पाकीज़ा बनाए, पाको पाकीज़ा बनाए थे जो खुद रब ने बदन, आज सहरा में पड़े हैं वही बेगोर कफन।

हसरत न रहे, रह गया हो जो सितम कोई तो वो भी कर ले। जीत कर हार गई तेरी हुकूमत हमसे, फिक्र शब्बीर तो फैले, फिक्र शब्बीर तो फैलेगी मोहम्मद की कसम, ये तेरे बस में नहीं माले।

बार कहाल जाग उठी बीबियां जो से मुसलसल निढाल भरे दरबार से मजलूम खतीबा का सवाल कलेमा जिसका पढ़ा कलेमा जिसका पढ़ा उसका जिगर काट लिया अपने मोहसिन के।

होश उठा, या अली आपकी बेटी का अजब खुतबा था, मुर्दा दरबार पे छाई थी खतीबा की सदा, बिज गई सरवर और रेहान वहां फर्शे अज़ा, भाई के सर पे नजर, भाई के सर पे नजर, ज़ैनब कुबरा।

सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद खे ये इश्क जो आजा वसण जो करार असल इमामन सी।

बोल अली बोल क्या खबर इसको पता कितना है अनमोल अली बेखबर अक्ल के मीजान पे मत बोल अली अपनी सांसों में वजीफों में तू बस बोल अली बैठ मौला के फकीरों में जरा बोल अली बोल अली बोल अली बोल अली

अपने ही शहर में मोरा तुम्हें तन्हा देखा, फातिमा जहरा को रोते ही हमेशा देखा, वार तलवार का तुम पर सर सजदा देखा, बाहु का आज भी तुर्क

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: रोकराइणा है छा धरणन ए जत्थन जरिए इलेक्शन रोकराए सके थी। कौमी असेंबली में गालाइंदे वजीर आजम के सलाहकार राणा सनाउला चाहे तो मुजाहिरीन रावला कोर्ट में धरणो हणी वेठल आन बो किथे भी एहतजाज ना है। पाबंदी बढ़ियल इलेक्शन कमेटी मुआजरन जो 12 सीटन जो बुनियाद बनाए मुजफ्फराबाद से लश्कर खुशी करण चाहे थी।

लीबियाचे नायब कमांडर इन चीफ जी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। मौलाना सां जेके गाल कई आहे कबर में खणी वेंदुस पर कंहिं खे न ॿुधाईंदुस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं JUI सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान विच में क़ौमी असेंबली इजलास दौरान दिलचस्प जुमलनि जी ॾे वठि। मौलाना फज़लुर रहमान जवाब ॾींदे चयो त वज़ीर आज़म खे ॻाल्हि ऐवान खे ॿुधाइण जी इजाज़त ॾियां थो, जंहिं ते वज़ीर आज़म वरी जवाब ॾींदे चयो त मौलाना जी आछ क़बूल न कंदुसि छाकाणि त पोइ मामला तमामु घणा ख़राब थी वेंदा। ॿिन्ही ॼणनि विच में कहिड़ी ॻाल्हि थी वज़ीर आज़म ऐं मौलाना बि न ॿुधायो। बिलाल भुट्टो ज़रदारी जो MQM ते तंज, वफ़ाक़ी हुकूमत खां धार थियण जो मशवरो। क़ौमी असेंबली में ॻाल्हाईंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी चयो त कराची जे मेंबर्स खे तरमीम जो लॉलीपॉप ॾिनो वेंदो आहे। छा कराची वधीक अहम आहे या ही कुर्सियूं? अवां केसि ताईं हिन हलंदा? वफ़ाक़ी हुकूमत खां धार थियो, का बि तरमीम आणण खां पहिरीं मकानी चूंडूं करायूं वञनि। कराची जहिड़ो मकानी निज़ाम लाहौर में बि आणियो, इस्लामाबाद में मकानी निज़ाम आणियो, मेयर खे ख़ुदि मुख़्तार बणायो।

सिंध मुख़्तलिफ़ शहरनि में 8 मुहरम हराम जा मातमी जुलूस बरामद। हर पासे या हुसैन जूं सदाऊं। कराची मिनिस्टर पार्क खां निकितल मातमी जुलूस रिवायती रस्तनि तां थींदो। खैरपुर उमरकोट कोटकी सिटारजा ऐं शाहपुर जहानिया में बि मातमी जुलूस बरामद। सिक्योरिटी जा इंतज़ाम बि इलाही सख़्त कया विया।

0: पलीरवेट टिनवरियन टी मासूम बाड़ी कुलसुम के जाती बाद बेदर्दी से कत्ल करने का इंकशाफ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बाड़ी सा जाती की तस्दीक। कायदाबाद में गुजर रात बाड़ी जो बोरी बंद लाश मिलो हो वाकई जो सूबाई करू वजीर जाल सला जा नोटिस वरतो एसएसपी मलीर के जवाब जी
1: वर्क टुडे इज ब्रोकन वी आर ऑल वर्किंग इन टू मिनट
0: कोर्ट में अगवा थे व्यापारी हरेश कुमार की बाजियाबी लाइ कराची हैदराबाद मीरपुर खास ए कुनरी में एहतजाजी मुजाहरा हिंदू पंचायत के सदे मुख्तलिफ शहर में एहतजाज किया गया। मुजाहन तो जरी जमीन से पानी लाए वेल हरेश कुमार के बी पे अगवा किया पुलिस अं तेस बाजियाब ना कराया।

एचओ आपका जाना लारी की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मदद तशद थियण की तस्दीक पिंपली शाख वासण नूरपान और महतम जो ब हफ्ता अग पुरसरार नमूने मौत पे हो वारिसन वाक़े के आबकार करार दिनों शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिसम से तशद की तस्दीक थी पुलिस जो चवण है हतमी रिपोर्ट जो इंतजार है।

घोटकी में डोहारी जान मारियल निर्या सिटी वासी नौजवान के वारिसन जो पुलिस खिलाफ एहतजाज। मुजाहिन जाति दुश्मनी अब्दुल फताह गिरोही के चार डी अग सखर मां मोटल तां खंभियो वियो हो। गुजल रात सदर थाने के मुकाबलो डिखारे नौजवान के मारे जुल्म वो है। असांजी बिरादरी के मानून सा दुश्मनी आए उन्हें चवण से नौजवान के मारो वो है। आईजी सिंध डीआईजी सक्कर वाक्य की जांच करा इंसाफ फराहम कर। छाछरे के इलाके मुबारक रिंद में बाहि लगन सबब 10 ककावा घर सड़ी वा। अल तल भी सड़ी रखती वो। घोट अमीन की दाणे में चुल बार चिड़ंग उथण सबब नोड़े बिरादरी के 10 पुरेतन के घर के बाहि लगी वही। घर में पयल अनाज कपड़न हंडन खटन समेत लखें रुपये जो सामान सड़ी वो। मुतासिर खुले आसमान हेठ वेठल

वो जुल्फिकार की वेस्ट था जुलझन, बचपन से सास ही रह था जुलझन, बेमिसलो बेनजीर था आप था जुलझन, क्यों ना हो रसूल ने पाल था जुलझन, पहला सवार नबी एक दिगार है और दूसरा ये पीछे नबी सवार है। जस्त शेर की चितवन हिरन की आँख, चलता देख देख के शाह जमन की आँख, पड़ती थी यूं हर पे उस सब चिकन की आँख, लड़ती हो जैसे जंग में शमशीर जन की आँख, तेरे भाई जिस पे उसका विवार पे चल गया

0: हुसैन की, बोले अली हुसैन, बोले अली हुसैन हो अब भी हवास में, ऐसी तो जंग हम न लड़े तो प्यास में। आई सदाए गैब के बस हुसैन, दम ले हवा में चंद नफस हुसैन, गर्मी से हाथ है फरस हुसैन, वक्त नमाज असर है बस हुसैन। ये देते हजर जो लगा पुश्त पे भाला, करपूस पे थर्रा के गिरे हजरत वाला, जिब्रील ने कदम से रखा
1: और

प्रभु में लौट के आया है जुलझना, समझी सकीना बाबा को लाया है जुलझना, सर खाक पर पटक के पुकारा बुराहवार, सैदानियों बिछड़ गया मुझसे मेरा सवार।

रण सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद के यो इश्क जो आजार वसण जो करार असल इमामन सी।

जवाज भी है, लुटा है गुलशन जहरा तो कोई राज भी है। ये राज वो है कि खान को इस पे नाज भी है, बराए नाज बहक की वो नमाज भी है। इस

0: पाते रहे और अपनी राह शहादत की समत जाते रहे। कमर रुकू की तरह थी मगर हुसैन उठे, कहले जुल्म पे लाज़िम था अब के तेर चले। गजब की तेर चली कोई रोकता कैसे, इमाम वक्त थे अल्लाह की रजा पे रुके। अजान असर सुनी सुभाना रब्बी अल्लाह ला। आई सदाए गैब इबादत का वक्त है, ऐ फातिमा के लाल तिलावत का वक्त है। जन्नत में सब बंधी है इमामत का वक्त है। बस बस हुसैन बस ये इबादत का वक्त है। रख ली मयान में शहवाना ने जुल्फकार, वो गौल बांधे आए कमादार दस हजार। वो बेशुमार थे वो के फल और एक हुसैन, वो सैकड़ों पयाम अजल और एक हुसैन। डूबे हुए थे खून में गेसु हुसैन के, तीरों ने छान डाले थे पहलू हुसैन के। नैजे कब ने बिने पहलू पे किया वार, कांधे पे चली सा जरारा की भी तलवार। नावक बिने काहिल का कने के हुआ पार, बाजू में दरा खुदा खाक पर गिरा। खैर निसा का माह लता खाक पर गिरा। रेती पे मुस्तफा के जिगर का लहू गिरा। सैयद गिरा इमाम गिरा ने खू गिरा। वो जुल्म हो रहा था कि दुनिया उलटती थी, जब जेर से गर्दन शब्बीर कटती थी। वो कुंद तेज चलती थी, मातम पुना नमाज थी और खून रोती थी। जारी थी ये सदा के नबी का नवासा हूँ, अम्मा पिलाओ पानी मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा। अजब अदा से नमाजी नमाज पढ़ के गया, बहन के सामने नोके सिना पे चढ़ के गया। नजर में भाई के सजदे की आबो ताब जो थी, बहन ने सर खुले मख्तल में मगरबैन पढ़ी। नजर के सामने हर महलका की लाश रही, मगर जले हुए खैमों की जानमाज बिछी। गमे हुसैन की बरछी उठा गई जैनब, मगर नमाज की दुनिया बसा गई जैना।
1: जी एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम और शानदार करियर मौके पेश कर वने थो। जी एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह थे स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार एंजल फर्द जी गोला में आए, जिको मीडिया मैनेजमेंट टीम लीड अगते वधाए सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पेंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौके आए, देर न करियो अभी अप्लाई करियो। जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज।
2: सख्ती शहादत जी निसोरो ही नाज, सख्ती शहादत जी निसोरो ही नाज, रिंद परूरी ने रा

रण सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद के ये इश्क जो आजा वसण जो करार असल इमामन सी।

दिफा वारो वजीर ख्वाजा आसिफ कश्मीर बाबत दिनल बयान ते कायम रावला कोर्ट बाबत बयान ते माफ वठण खां इनकार करे छडियो। कौमी असेंबली में गालाइंदे दिफा वारे वजीर ख्वाजा आसिफ चयो त बर्थ सर्टिफिकेट सां केर बि पाकिस्तानी या कश्मीरी नथो थी सघे। बयान ते वज़ाहत ॾेई चुको आहियां। अपोजिशन माज़ीअ जूं ग़लतियूं विसारे मिसाक़े जमहूरियत ते सहियूं करे। मिसाक़े जमहूरियत में बहितरीअ जी गुंजाइश आहे त उनखे दुरुस्त कयो वञे। आज़ाद कश्मीर जी अवामी एक्शन कमेटी मूंसां राबितो कयो आहे। अॼु खेनि मुस्तक़बिल जी हिकमत अमलीअ जो ऐलान करणो हो पर नाहे कयो। एक्शन कमेटीअ जो ख़त हुकूमत ॾांहुं मोकिलियो आहे पर अञा ताईं जवाबु नाहे मिलियो। क़ौमी असेंबलीअ में ॻाल्हाईंदे जे सरबराह मौलाना फज़ल रहमान जो चवणो हो त माण्हू वॾे अंग में रावला कोर्ट में मौजूदु आहिनि। हुननि मुज़फ़्फ़राबाद तर्फ़ मार्च बि मुलतवी कयो आहे। ॻाल्हियूं थियणु घुरिजनि, संदनि मुतालबनि खे बि ॾिसणु घुरिजे। तकरीर जे बुनियाद ते तशदुद न थियणु घुरिजे। ख्वाजा आसिफ जहिड़ा बयान कावड़ वधाईंदा आहिनि। दिफ़ा वारे वज़ीर तौरु ख्वाजा आसिफ खे अहिड़ा बयान न ॾियणु घुरिजनि हा। वज़ीर आज़म वेढ़ लाइ ख्वाजा आसिफ ऐं ठाह लाइ साग डार खे रखी छॾियो आहे। पार्लियामेंट में जज़्बाती ॻाल्हियूं थियूं आहिनि, इहो वक़्तु बर्दाश्त करण जो आहे। जज़्बाती रद अमल हुकूमत खे नथो सुञे। आज़ाद कश्मीर में احتجاج जो मक़सदु चूंडूं रोकराइणु आहे। छा धरणनि ऐं जथनि ज़रिए इलेक्शन रोकराए सघिजे थी? क़ौमी असेंबली में ॻाल्हाईंदे वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाउला चयो आहे त मुज़ाहिरीन रावला कोर्ट में धरणो हणी वेठल आहिनि, ॿियो किथे बि احتجاج नाहे। पाबंदी मड़ियल एक्शन कमेटी मुहाजरनि जूं 12 सीटुनि जो बुनियादु बणाए मुज़फ़्फ़राबाद ते लश्करकुशी करणु चाहे थी।

0: पाकिस्तान अमेरिका ऐं टियाकड़ी कंदड़ मुल्कनि जूं टेक्निकल ॻाल्हियूं मुकमल। चार वर्किंग ग्रुप क़ाइम करण ते बेतफ़ाक। दौरन जो जंग जे मुकमल ख़ात्मे लाइ ॻाल्हियूं जारी रखण ते बेतफ़ाक। ईरानी नायब परॾेही वज़ीर कासिम गरीबाबादी चयो आहे त अमेरिका ऐं ईरान विच में ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौरु आला सतही हूंदो। ॻाल्हियुनि लाइ ईरानी वफ़द जी क़यादत स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ़ कंदो। परॾेही वज़ीर अब्बास राक़ची, अमरीकी नायब सदर, पाकिस्तान ऐं क़तर जा वज़ीर आज़म बि शरीक थींदा। अमरीका मुंजमन डॉलर ॿिनि किस्तनि में जारी कंदो। हर किस्त 6 अरब डॉलर्स ते ॿधल हूंदी। लबनान में चिकटाण जे ख़ात्मे लाइ अलॻि अलॻि सेलबे क़ाइमु कया विया आहिनि। अमरीकी सेनेट ईरान ख़िलाफ़ ॿीहर जंग शुरू करण खां पहिरीं कांग्रेस जी मंज़ूरीअ खे लाज़मी करार ॾेई छॾियो। ठहराउ अक्सरियत राय सां मंज़ूर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी सेनेट ठहराउ ते सख़्त तनक़ीद। अमरीकी सेनेट में ईरान जंग बाबति ठहराउ जी हिमायत में 50 ऐं मुखालफ़त में 48 वोट पिया। ट्रंप जी जमात रिपब्लिकन्स बि जंग मुखालिफ़ ठहराउ जी हिमायत में वोट कयो। अमरीकी सदर सेनेट जी मंज़ूर कयल ठहराउ ते तनक़ीद कंदे चयो आहे त सेनेट ठहराउ मंज़ूर करे दुश्मन खे फ़ाइदो ऐं सहूलियत ॾिनी। चइनि नाकारा रिपब्लिकन्स बि ठहराउ ते डेमोक्रेट्स जो साथ ॾिनो। हुननि सेनेटर्स, मुंहिंजो कमु वधीक मुश्किल बणायो आहे, मां कंहिं न कंहिं तरीक़े सां कमु मुकमल कंदुसि। ईरान अमेरिका मुआहिदो वाशिंगटन जी शिकस्त जो ऐलान आहे। ईरानी पार्लियामेंट जी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ़ जो चवण हो त इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश्त नामो कंहिं दबाउ जो नतीजो न आहे। यादाश्त नामो ईरानी क़ौम जी मज़ाहमत, ताक़त ऐं बहादुरीअ जो सितारो आहे। हाणे इलाक़ाई मुल्कनि खे बि परॾेही मुदाख़लत रदि करणु घुरिजे।
1: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम ऐं शानदार कैरियर मौक़ो पेश कयो वञे थो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौज़िस पोस्ट लाइ काबिल तजुर्बेकार ऐं ज़िम्मेवार उमीदवारनि खां दरख़्वास्तूं तलब कयूं वञनि थियूं। GAFM एक अहिड़े प्रोफेशनल फर्द जी ॻोल्हा में आहे जेको मीडिया मैनेजमेंट, टीम लीडरशिप ऐं ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मज़बूत सलाहियतूं रखे ऐं इदारे खे बहितर अंदाज में अॻिते वधाए सघे। ख़्वाहिशमंद उमीदवार पंहिंजी CV फॉरन व्हाट्सएप ज़रिए मोकिलिन। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौको है। देर न करो, अभी ही अप्लाई करो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज।
3: सख्ती शहादत जी निसोरो ई नाज। सख्ती शहादत जी निसोरो ई नाज। रिंद परूड़ी ने रा

0: तू ना मेरा हीटर, तू तो मेरा फैन।
1: White H Beauty Cream 5-day beauty plan के साथ एलोवेरा, vitamins और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके minerals स्किन में fully absorb हो जाए, स्किन को fair और fresh बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। White H Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। White H Beauty Cream, glowing skin का राज, a product of Biocon International Pakistan. GFM 9

0: टियाकड़ी मुल्कनि जूं टेक्निकल ॻाल्हियूं मुकमल, चार वर्किंग ग्रुप क़ाइम करण ते तफ़ाक़। दुल्हन जो जंग जे मुकमल ख़ात्मे लाइ ॻाल्हियूं जारी रखण ते बि तफ़ाक़। ईरानी नायब परॾेही वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादी चयो आहे त अमरीका ऐं ईरान विच में ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर आला सतही हूंदो। ॻाल्हियुनि लाइ ईरानी वफ़द जी क़यादत स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ़ कंदो। परॾेही वज़ीर अब्बास राग़ची, अमरीकी नायब सदर, पाकिस्तान ऐं कतर जा वज़ीर आज़म बि शरीक थींदा। अमरीका मंजमंद कयल ईरानी असासनि मां 12 अरब डॉलर ॿिनि किस्तनि में जारी कंदो। हर किस्त 6 अरब डॉलर ते ॿधल हूंदी। लबनान में छिकताण जे ख़ात्मे लाइ अलॻि अलॻि सेल बि क़ाइमु कया विया आहिनि।
1: अमरीकी सेनेट ईरान ख़िलाफ़ ॿीहर जंग शुरू करण खां पहिरीं कांग्रेस जी मंज़ूरी खे लाज़मी करार ॾेई छॾियो। ठहराउ अक्सरनि सां मंज़ूर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी सेनेट ठहराउ ते सख़्त तनक़ीद। अमरीकी सेनेट में ईरान जंग बाबति ठहराउ जी हिमायत में 50 ऐं मुखालफ़त में 48 वोट पिया। ट्रंप जी जमात रिपब्लिकन्स बि जंग मुखालिफ़ ठहराउ जी हिमायत में वोट कयो। अमरीकी सदर सेनेट जे मंज़ूर कयल ठहराउ ते तनक़ीद कंदे चयो आहे त सेनेट ठहराउ मंज़ूर करे दुश्मन खे फ़ाइदो ऐं सहूलियत ॾिनी आहे। चइनि नाकारा रिपब्लिकन्स बि ठहराउ ते डेमोक्रेट्स जो साथ ॾिनो। हुननि सेनेटर्स मुंहिंजो कमु वधीक मुश्किल करे छॾियो आहे। मां कंहिं न कंहिं तरीक़े सां कमु मुकमल कंदुसि।
0: ईरान अमरीका मुआहिदो वॉशिंगटन जी शिकस्त जो ऐलान आहे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ़ चयो आहे त इस्लामाबाद मफ़ामती याददाश्त नामो कंहिं दबाव जो नतीजो न आहे। याददाश्त नामो ईरानी क़ौम जी मज़ामत, ताक़त ऐं बहादुरीअ जो सितारो आहे। हाणे इलाक़ाई मुल्कनि खे बि परॾेही मुदाख़लत रद्द करणु घुरिजे।

0: चीफ जी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर से मुलाकात। आईएसपीआर मौजिब लीबिया के अरब हथियार बंदन फौज जो नायब कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा जीएचक्यू आमद से खेस गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल से मुलाकात दौरान गडियल दिलचस्पी के मामलन इलाकई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई सहकार के हथी दियण से ख्याल की डेवट। फील्ड मार्शल पाक फौज दोस्त मुल्क से अमन इस्तेकाम तामीरी राबतन के हथी दियण लाय पुरजम है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: GAFM 90.8 सकरण नवाबशाह तरफा एक अहम और शानदार करियर मौके पेश कर वने थो। GAFM 90.8 सकरण नवाबशाह थे स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार और जिम्मेवार उम्मीदवार का दरख्वास्तों तलब कई वन थी। GAFM एक अड़े प्रोफेशनल फर्द की गोल्हा में है जो मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप और ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतों रखे इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलें। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौके है। देर न करियो, अभी अप्लाई करियो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज।
3: सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान के जरो नाहे यजीद के इश्क जो आजा वसण जो करार असल इमामन सी।

0: GAFM 90.8 सकरंट नवाब शाह तरफा एक अहम और शानदार करियर मौकियों पेश कर वने थो GAFM 90.8 सकरंट नवाब शाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार और जिम्मेवार उम्मीदवार का दरख्वास्तों तलब कई वन थियो GAFM एक अहड़े प्रोफेशनल फर्द की गोल्हा में है जो मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप और ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतूं रखे और इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पेंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन व्हाट्सएप नंबर 03111770451 ही एक बेहतरीन करियर मौको आ है देर न करियो अभी अप्लाई करियो GAFM 90.8 सकरंट नवाब शाह जो आवाज
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
2: सख्ती शहादत जी मिड़ोई मला ज़रो नाहे यज़ीद के ये इश्क जो आज़ा पुसण जो करार असल इमामन सी

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: सख्ती शहादत जी निसोरो ई नाज सख्ती शहादत जी निसोरो ई नाज रिंद परूरी ने रा

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: वजीर आजम की काम में मदद करने के बजाय मजीद मुश्किलात पैदा करते हैं। कि इत्तेहादी भी पूछे, अपोजिशन भी पूछे, पाकिस्तान की हर शहरी ये सवाल करे कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावला कोट के कश्मीरी कश्मीरी नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें कोई वजीरे इस मुल्क का वजीरे दिफा ऐसे बात करे कि वो वजीर आज तक वजीर है माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। तो अगर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं तो हम कौन सा जस्टिफिकेशन दे कि हम इस वजीर के साथ बैठे हैं।
2: पीपल्स पार्टी चेयरमैन जीफा वाले वजीर ख्वाजा आसिफ ते सख्त तनकीद। वजीर आजम के वजीरन के कंट्रोल करण जो भी मशवरो ॾेई छॾियो। कौमी असेंबली में खिताब कंदे पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो चयो त वजीर आजम महिनत सां कमु कंदो आहे। आज़ाद कश्मीर जो मसलो सियासी अंदाज में हल करण जी कोशिश कई वई पर हिकु वफ़ाक़ी वज़ीर बाह ते तेल छिड़के वधीक भड़कायो। वज़ीर अञा ताईं माफ़ी वठण लाइ बि तयारु नाहे। रावला कोट जे शहरनि खे कश्मीरी न सम्झंदड़ वज़ीर छो आहिनि? वज़ीर आज़म खे पंहिंजी टीम खे कंट्रोल करणु घुर्जे। जेकॾहिं को वज़ीर चवे त असां 12 सीटूं खीसे में खणी ईंदा आहियूं त असां कंहिंजे साथ ॾियूं? राजा परवेज़ अशरफ ख्वाजा आसिफ़ खे बयान वापसि वठण जो मौक़ो ॾिनो। दिफ़ा वारो वज़ीर माफ़ी वठण लाइ बि तयारु नाहे। कश्मीर मसइले जे हल लाइ मौलाना फज़ल रहमान खे किरदारु अदा करणु ॾिनो वञे।
3: दिफ़ा वारो वज़ीर ख्वाजा आसिफ़ कश्मीर बाबति ॾिनल बयान ते क़ाइम। रावला कोट बाबति बयान ते माफ़ी वठण खां इनकार। क़ौमी असेंबली में ॻाल्हाईंदे दिफ़ा वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ़ चयो त बर्थ सर्टिफिकेट सां केर बि पाकिस्तानी या कश्मीरी नथो थी सघे। बयान ते वज़ाहत ॾेई चुको आहियां। अपोज़िशन माज़ी जूं ग़लतियूं विसारे मिसा खे जमहूरियत ते सहियूं करे। मिसा खे जमहूरियत में बहितरी जी गुंजाइश आहे त हुनखे दुरुस्त कयो वञे।
2: आज़ाद कश्मीर जी अवामी एक्शन कमेटी मूंसां राबितो कयो। अॼु खेनि मुस्तक़बिल जी हिकमत अमलीअ जो ऐलान करणो हो पर नाहे कयो वियो। एक्शन कमेटीअ जो ख़त हुकूमत ॾांहुं मोकिलियो आहे पर अञा ताईं जवाबु नाहे मिलियो। क़ौमी असेंबली में ॻाल्हाईंदे JUS सरबराह मौलाना फज़ल रहमान जो चवणो हो त माण्हू वॾे अंग में रावला कोट में मौजूदु आहिनि। हुननि मुज़फ़राबाद तरफ़ मार्च बि मुलतवी कयो आहे। ॻाल्हियूं थियणु घुर्जनि, संदनि मुतालबनि खे बि ॾिसणु घुर्जे। तकरीर जी बुनियाद ते तशद न थियणु घुर्जे। ख्वाजा आसिफ़ जहिड़ा बयान कावड़ वधाईंदा आहिनि। दिफ़ा वारे वज़ीर तौरु ख्वाजा आसिफ़ खे अहिड़ा बयान न ॾियणु घुर्जनि हा। वज़ीर आज़म वेड़ लाइ ख्वाजा आसिफ़ ऐं ठाह लाइ साग डार खे रखियो आहे। पार्लियामेंट में जज़्बाती ॻाल्हियूं थियूं आहिनि, हीअ वक़्तु बर्दाश्त करण जो आहे। जज़्बाती रद अमल हुकूमत खे नथो सूहे।
3: आज़ाद कश्मीर में एहतजाज जो मक़सदु चूंडूं रोकराइण आहे। छा धरणनि ऐं जथनि ज़रिए इलेक्शन रोकराए सघिजे थी? क़ौमी असेंबली में ॻाल्हाईंदे वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाउला चयो आहे त मुज़ाहिन रावला कोट में धरणो हणी वेठल आहिनि, ॿियो किथे बि एहतजाज नाहे। पाबंदी बणियल एक्शन कमेटी मुआजरनि जूं 12 सीटनि जो बुनियाद बणाए मुज़फ़राबाद ते लश्कर कुशी करणु चाहे थी।